0: सुनौले म आफ्ना बैरागले गाउँछु बस आज बनाउले
1: कागे सागो चुनु चुनु जुत्ता भड्कुनाले मेरा साई पराया गया।

0: जनता केवल 5 दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम, रेडियो भेरी एफएम,
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी